गन्नत्बे काशीवलट दिन्नत्बे मनुष्य कम मिनी सुनी काशीवासी ऐति आयलंग बुहुम हिंगाई गन्नट ने मनुष्य कम मिनी सुनी काशीवलट गन्नत्बे काशीवलट दिन

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

0: बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: क्यों ना क्यों सताते हो,